0: இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சிகள் இதுவரை பாட்டு பாடவா, கங்கைக்கரை பாட்டு ஆகிய படங்களிலிருந்து பாடல்கள் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। इन मतदान केंद्रों की मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर

0: विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
0: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
0: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण।
0: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रिक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
2: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने 1 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சிகள் இதுவரை. கர்ணன், 1000 ரூபாய், காதலிக்க நேரமில்லை ஆகிய படங்களிலிருந்து பாடல்கள் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
3: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
3: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
3: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
1: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया

0: कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के लिए के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर केवल एक फोटो और एक क्यूआर कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 1,88,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा दिए गए 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. All preparations are in place for counting of votes for the assembly elections in 4 states, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry to be held today. The counting will begin at 8 in the morning. Counting of postal ballots will be taken up first and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements for smooth counting at 4 states and 1 union territory. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies.
2: Janadesh 2026
3: Special program on results of assembly elections in Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry.
2: Today, the 4th of May 2026.
3: Our correspondents on the ground will bring the latest developments for you.
2: For in-depth analysis by the experts and latest update of vote counting.
3: Tune into Akashvani Gold along with additional frequencies.
2: From 8:30 a.m. onwards today.
3: Janadesh 2026.
1: Indian space startup Galaxy has launched Mission Drishti, world's first Optosar satellite aboard SpaceX's Falcon 9 rocket from California in United States.

0: கருந்தேள் கண்ணாயிரம் படத்திற்காக ஒலித்த பாடல்களை பாடியவர்கள் பி. சுசீலா, சதன், மனோரமா, எஸ். பி. பாலசுப்ரமணியம் ஆகியோர். கேட்ட நிகழ்ச்சி நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. சில நொடிகளில் செய்தி அறிக்கைகள் தொடரும். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கி சாத் மே வைஷ்ணவி. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी. निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा. मतगणना 24 मई को की जाएगी. निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है. तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है. केरला में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं. असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी. पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
2: जनादेश 2026.
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
3: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
3: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण.
3: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रिक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026.
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे. 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के संबंध निरंतरता और परिवर्तन से परिपूर्ण है. उन्होंने कहा कि ये संबंध साझा इतिहास पर आधारित

है और भविष्य में अपार संभावनाओं से भरा है। जमैका के एक निजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को अधिक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने लगभग अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान हैं। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद रहने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस के संदिग्ध प्रकोप के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हंता वायरस का एक मामला पुष्ट हो गया है जबकि 5 अन्य संदिग्ध मामलों की जांच चल रही है। हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों और अन्य कृंतकों के मलमूत्र से फैलता है और ये इंसानों के लिए जानलेवा श्वसन रोग का कारण बन सकता है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा दिए गए 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुना। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

கிடந்து கட்டு கதை கெதுக்கு தாத்தா தாத்தி தாகே நாங்க தென்.

உடன் நகத்தான் உடன் நகத்தான் உடன் நகத்தான்.

தட்ட கதா கிந்த கிண்ணா தட்ட கதா கிந்த கிண்ணா தட்ட கதா கிந்த

0: பஸ் ஹமோஷ் ஓகே பேர்மாங்க.
1: நேயர்களே, இன்றைய இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை கிஷன் மகாராஜ் அவர்களின் தபலா, குலாம் அலி அவர்களின் பாட்டு ஆகியவை இடம்பெற்றன. தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी. निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा. मतगणना 24 मई को की जाएगी. निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है. तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है. केरल में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं. असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी. पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का
3: तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
4: आज सुबह 8:30 बजे से
3: मतगणना की पल पल की खबर,
4: हर सीट की सटीक जानकारी,
3: संवाददाताओं से ताजा हाल
4: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
3: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
4: जनादेश 2026.
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे. 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के संबंध निरंतरता और परिवर्तन से परिपूर्ण है. उन्होंने कहा कि ये संबंध साझा इतिहास पर आधारित है और भविष्य में अपार संभावनाओं से भरा है. जमैका के एक निजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को अधिक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए. पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक

0: प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 1,88,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस के संदिग्ध प्रकोप के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हंता वायरस का एक मामला पुष्ट हो गया है, जबकि 5 अन्य संदिग्ध मामलों की जांच चल रही है। हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों और अन्य कृंतकों के मलमूत्र से फैलता है और ये इंसानों के लिए जानलेवा श्वसन रोग का कारण बन सकता है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं लिया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और आंधी तथा तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज गरज के साथ तेज वर्षा की आशंका जताई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। All preparations are in place for counting of votes for the assembly elections in 4 states, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry, to be held today. The counting will begin at 8 in the morning. Counting of postal ballots will be taken up first and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements for smooth counting at 4 states and 1 union territory. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies.
2: Janadesh 2026.
3: Special program on results of assembly elections in Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry.
2: Today, the 4th of May 2026.
3: Our correspondents on the ground will bring the latest developments for you.
2: For in-depth analysis by the experts and latest update of vote counting.
3: Tune into Akashvani Gold along with additional frequencies.
2: From 8:30 a.m. onwards today.
3: Janadesh 2026.
1: Indian space startup Galaxy has launched Mission Drishti, world's first Optosat satellite, aboard SpaceX's Falcon 9 rocket from California in United States. Weighing 190 kilograms, Mission Drishti is the largest Earth observation satellite ever built by a private Indian company. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi lauded the successful launch of Mission Drishti satellite, highlighting it as a major milestone in India's space and innovation journey. The Ministry of External Affairs, MEA, stated that Lipulekh Pass has long been a long-standing route for the Kailash Mansarovar Yatra since 1954 and said this is not a new development. Official spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, answered the media questions regarding comments made by the Foreign Ministry of Nepal on the border issue in the context of the Kailash.